0: ये क्या खेलता है दिया?
1: खेलते
0: ये क्या खेलता है दिया? ये क्या खेल होता?
1: खेलते
0: ये क्या नहीं खेलता है लाला? हेलो,
2: हेलो
0: ये क्या खेलता है दिया?
2: हेलो
0: ओके okay.